एलजी ले आयो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई, नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी घर घरमा एलजी, एलजी लाइफ गुड।

प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे तुझे सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तुझे लेंगे मम्मी डैडी को मैं घर पे बना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे मिल मोदी पसंद है, मैं हिंदी खाने से बना रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अपनी।

गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे खाओ तेरी पूरी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं कदम बना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे ब्लू बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ, तुमने मैं आया है, तू लंदन में रहती है, अब भी जाके

धुमधाम बाकी धुमधाम राइट सपन नया इबी मेरो टियागो इबी सँग लाइट छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the